0: क्या रह जाए सारे पांवों की आठ।
1: This is Alex Bleeker and you're listening to WRAS.